0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: A musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Centre, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

लाइफ में मुझे लगता है जितना सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही काइंडनेस इम्पोर्टेंट है. यू नो, छोटी छोटी चीजों पर अगर हम लाइफ में काइंड रहते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, और खासकर उनके साथ जो ओहदे में हमसे कम है, पोजीशन में हमसे नीचे है, उनके साथ अगर हम काइंड रहते हैं तो हमारी छोटी छोटी सी काइंडनेस ना उनका दिन बना देती है. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद के साथ काइंड रहा जाए. जब आप खुद के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सेल्फ टॉक आप खुद के साथ अच्छे से करेंगे, तो दूसरों के साथ भी आप अच्छी तरह से बिहेव कर पाते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम, या ये मैं कहूँ सबसे ज्यादा वक्त, हम खुद के साथ ही रूड हो जाते हैं. सबसे ज्यादा खुद की आवाज को हम दबा देते हैं. हमारा दिल अगर हमसे कुछ कहता है, हम कहते हैं भी वक्त नहीं है सब चीजों के लिए. या फिर कई बार तो हम उससे ये भी नहीं कहते अपने दिल से कि अब वक्त नहीं है, हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं. तो खुद के साथ जितना आप रूड होते हैं, या खुद की बातों को आप जितना अवॉइड करते हैं, या जितना दबाते हैं, एक्चुअली आप उतना ही दूसरों के साथ रूड होते हैं, आप उतना ही चिड़चिड़े होते हैं. और आपको ये समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेस, ये चिड़चिड़ाहट आपको हो क्यों रही है. असल में आपने अपने ही मन की बात नहीं सुनी है. तो अपनी बात, अपने मन की बात जरूर सुनिए. खुद के साथ अच्छे से बात कीजिए, खुद के साथ काइंड रहिए, और दूसरों के साथ काइंडनेस से बिहेव करने की कोशिश कीजिए. इसी बात पर सताक्षी के साथ चलिए आगे चले एक और ट्रैक हमारे इस मॉर्निंग को जो खास बना रहा है. इसे सुनिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी. सताक्षी है आपके साथ.

सो भाई किचन में इस वक्त क्या बन रहा है, कुछ ऐसा जो हेल्दी हो? हाँ, और सबसे बड़ी बात, जिसे स्मेल करके जिसकी खुशबू जब नाक तक पहुंचे ना तो मुंह में पानी आ जाए। आए है, मतलब देखिए ना, सुबह सुबह मैं ये कहती हूँ अक्सर, और मैं फॉलो भी करती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट, मतलब नाइट का जो डिनर है उसके और ब्रेकफास्ट के बीच में एटलीस्ट 10 घंटे का, है ना, 16 घंटे की फास्टिंग तो कहते हैं बहुत अच्छी होती है, बट एटलीस्ट 10 से 12 घंटे का जो है वो तो खींचना ही खींचना है बॉस। अगर 16 घंटे खींच जाते हैं डेट इज़ वेरी गुड, लेकिन फिर भी जब कुछ अच्छा बना हो तो वो फास्टिंग जो है वो टूटनी बहुत ज़रूरी है, है ना। तो कुछ ऐसा बनाइए कि हेल्दी भी हो और मुंह में पानी भी आ जाए, तो अगला इंसान जो है वो खुद ब खुद किचन की तरफ खींचा चला आए और इस तरह पूरा परिवार एक साथ बैठ के उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करे। घर में ठाके गूंजे, यार सुबह की शुरुआत अगर ऐसी हो तो दिन तो लाजवाब गुजरेगा। क्या ख्याल है? सोचिए मेरी बात को और सुनते रहिए। ठापन सताक्षी आपके साथ है रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कर लेना। कई बार सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत हैवीनेस लगती है, बहुत ज्यादा भारी, सर भारी लगता है, तबीयत भारी लगती है, एक बोझ सा लगता है। देखिए, अगर ऐसा आपको भी लग रहा है तो सबसे पहली बात तो आप रात को ठीक से सोए नहीं है, और रात को ठीक से ना सोने का मतलब ये है कि दिल पर कोई बोझ है, और दिल पर बोझ होने का मतलब ये है कि आपने खुद के साथ ठीक से बात नहीं की है। सेल्फ टॉक, ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबकी जिंदगी के लिए। सेल्फ टॉक करना मतलब खुद के साथ बात करना, और जब आप खुद के साथ बात करते हैं तो कई बार आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हिडन है, आपकी खुद की परेशानियां दिल की, मन की, वो आपके सामने आती हैं। कई बार जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, बहुत सारे मन की गांठें खुल जाती हैं। इसलिए सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग अच्छे से खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हैं ना, खुद के साथ बात करते हैं, मैंने देखा है अक्सर उन्हें कभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, वो मन पर बोझ नहीं रखते हैं, उनके लोगों से झगड़े कम होते हैं, उनको स्ट्रेस कम होता है। सो सेल्फ टॉक करते रहिए, खुद से बात करके उससे पूछिए अगर मन भारी लग रहा है कि आपके मन की परेशानी क्या है, उसे क्या चाहिए ऐसा जो आपने उसे नहीं दिया है। एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। सताक्षी आपके साथ है।

भाई ये वक्त अब धीरे धीरे बढ़ रहा है उस ओर जब निकलना है आपको अपने काम पे, या बहुत सारे लोग जो इस वक्त घर में भी काम में लगे हुए हैं, खासकर लेडीज जो इस वक्त किचन में हैं, घर के कामों को कर रही हैं, जल्दी जल्दी कर रही हैं, खासकर वो जो घर और बाहर दोनों को देखने वाली हैं, मतलब उनका खुद का भी करियर है और घर के भी सारे काम निपटा कर उन्हें ऑफिस के लिए निकलना होता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग खुद करते हैं, इनफैक्ट मेंस भी जो दूसरे देश में दूसरे शहरों में रह रहे हैं, पूरी फैमिली वहाँ पर नहीं होती, आप अकेले होते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम, इनफैक्ट खाना बनाना भी आपको खुद को करना होता है। तो लेडीज़ कहूँ या मेंस कहूँ विमेंस कहूँ, सब लोग हम लोग अपना काम जो है वो जल्दी जल्दी करने में, उसके बाद ऑफिस को भी निकलना है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के, है ना, काम पर भी जाना है, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सुबह से मैं कहना चाहती हूँ वो ये दोस्तों कि याद रखिए, ये दिन जो आपके हिस्से आया है ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं है, ये दिन जो आपके हिस्से आया है ये आपका खुद का भी है। तो इस दिन में आपको खुद के लिए भी वक्त निकालना है, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, खुद से मुखातिब होना है, खुद के लिए कुछ अच्छा करना है, खुद के चेहरे पर स्माइल लानी है। तो अपनी खुशियों का भी इसी दिन ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जिंदगी में ये दिन आया है और इस दिन में आपको अपने लिए वक्त चुराना है, है ना। तो ख्याल रखिएगा इस बात का और देखिए मुस्कुराइए। हाँ ये हुई ना बात, मतलब खुद के लिए मुस्कुराहट ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ की, तो ऐसे ही हंसते रहिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रसारणी पर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स इस सफर में।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: होप कि आप सब मिरर तो रोज देखते होंगे। जब भी आप तैयार होते हैं, मेकअप शेकअप करते हैं, बाहर जाने की तैयारी करते हैं, तो मिरर के सामने ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं और खुद को देखकर कहते हैं कि यार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप, नहीं कहते? अच्छा, मिरर से ही पूछ लेते हैं। ओके ओके, हाँ, तो मतलब मिरर में देखकर ये एहसास तो होता है ना कि आप अच्छे लग रहे हैं या फिर किसी चीज की कमी है। तो भाई कभी उस मिरर के सामने खड़े होकर जरा खुद से बात करके देख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मिरर के सामने सताक्षी खड़े होकर खुद से बात करना, बट यस, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करना। आपको पता है, जिन लोगों में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन्हें अक्सर हीलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो मिरर वर्क करें। ये मिरर ना बहुत कमाल की चीज है, इसे ऐवे मत लीजिए कि सिर्फ आपके मेकअप के लिए। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या आप मन भारी लग रहा है और आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकें या जिस पर आप विश्वास करके अपनी बात कह सकें, आप मिरर के सामने जाइए और वो जो उस तरफ एक इंसान है ना, उससे अपने मन की बात कहिए, उससे बातें करिए, उससे सेल्फ टॉक कीजिए। आप देखेंगे कि आप कुछ ही देर में कितना लाइट फील करते हैं, कितना हल्का फील करते हैं। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो आप ये रोज करना शुरू करें, मिरर के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर, मतलब जो बंदा उस तरफ है, हाँ जी, वो आप नहीं है, वो एक बहुत गजब का बंदा है जो आप में कॉन्फिडेंस लेकर आता है, तो उसके जरा बात कीजिए और देखिए कि कुछ ही दिनों में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप होना शुरू होता है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसे आजमाइए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। फिलहाल ये अगला ट्रैक आपके लिए।
1: जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, मुझे बात ये सबने समझाई थी, एक चक्कर है प्यार, उसमें घूमना नहीं, समंदर सा होगा डूबना नहीं, जरा बच के रहना, संभल के चलना, हो जाएगा बेहाल तो फिर ना कहना। और कहते कहते, सुनते सुनते, टकरा जो गया उस पार में, डर जा बेटा, लग गई तेरी, फट गया साला तू प्यार में।

सो फ्रेंड्स, आज का हमारा इट हैपेंस का सफर अब होता है यहीं पर खत्म। आज हमने बहुत सारी बातें की आपके साथ, बहुत सारे किस्से आपके साथ साझा किए सुबह के, और बहुत सारी ट्रिक्स जो आपकी मॉर्निंग को, आपकी लाइफ को हैप्पी बना दें, वो ट्रिक्स भी आपके साथ बांटी। आई होप कि आपने इस सफर को, आज के ट्रैक्स को मेरे साथ खूब इंजॉय किया होगा, आपको खूब मजा आया होगा। सो कल भी कुछ बेहतरीन गानों के साथ, बातों के साथ सताक्षी आपसे मिलेगी इसी सफर इट हैपेंस में। लेकिन अब आज का ये वक्त जानते हैं क्या कहता है। आज का ये वक्त कह रहा है कि आज सफर से हमें लेनी होगी इजाजत, लेनी होगी विदा। तो इस वादे के साथ आज जा रही हूँ कि कल फिर से लौटूंगी कुछ बेहतरीन गानों और बातों के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से, और तब तक कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
3: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा। लगा कैसा?
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
2: हिल मत चल।
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा?
2: या
3: या
2: या
3: ओके सॉफ्ट
2: सॉफ्ट
3: या
2: अब लाउड या।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी तुहाडे अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश शौलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो ब्रसानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी, ते brasani@brasani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसीं अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसीं सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड दे चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालां विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत दा नाम रोशन कीता। BFTA कांस, वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित कीता हैगा। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो थोनू पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगी है। तां अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तां उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तां चल मैं तुहानू दसदी हां, ते जे तुहानू समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि ये फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिन आप से बने हुए हूँ। इन्हों फिल्मों के विचों जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने तो जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस विच सब तो पहला नाम जो आता है वह है बूंग जी। हाँ ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे के नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.9 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिन नाल तुसी बने होए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा है वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी है की है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस दे। ए ना बचपन दे दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति दी कहानी हैगी है। ए भारत दी अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ए धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई है ते 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।
1: मिस्टर बाज

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर छे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ये हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Hello.

अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सिज अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, उह हैगी आ जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिपलिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म वेनिस फिल्म फैसटिवल PRESCI अवार्ड मिले हैगा। अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े नाल। रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, bersoni@bersoni.com साडी ईमेल आई डी है, जरिए जेड़ा भी तुसी अपनाना चाहते हो अपना लो, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो, है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night again?
2: Yo, I'm gonna smash your boy. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
12: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड

आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो ओमसॉक से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801
3: प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई
4: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक From 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा ओके
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्रीकेसीज को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Sarjan Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले कैसा फील कर रहे हैं आज आप? मिड वीक आ गया है, वेडनेसडे का दिन है एंड ब्रिस्बेन फेस्टिवल जो है वो चल रहा है। सो मैं क्या कह रही हूँ कि आपने अभी तक ब्रिस्बेन फेस्टिवल में शिरकत की या नहीं की? ऑफकोर्स आपको करनी चाहिए और ये अभी कुछ दिन रहने वाला है, तो मैं तो कहती हूँ कि इस वीकेंड के लिए अपना प्लान जरूर बना लीजिएगा। और अगर आप वीक डेज में भी कर रहे हैं शिरकत तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक यू कैन डू इट राइट। मतलब फ्री विल नाम की भी तो चीज़ है। जी हाँ, सो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा की तरह एक हेल्दी रिचुअल के साथ, एक ऐसा रिचुअल जो हमें हेल्दी रखता है, हैप्पी रखता है, इमोशनली फिजिकली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रखता है चीजों के लिए, और वो भी बिना केओस के। जी हाँ, सो आइए वही करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज और ये डीप ब्रेथ एक्सरसाइज होने वाली है अब। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम की शुरुआत होगी हमेशा की तरह एक बढ़िया से गाने के साथ। और आज जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कोई गाना वैसा नहीं है, मतलब वो आपको मधुर मधुर फीलिंग नहीं देगा, सुरीली फीलिंग नहीं देगा, बट आपको मस्ती जो है वो चढ़ाएगा। क्यों मैं कह रही हूँ, पहले आप गाना सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि गाने का नाम है ओ सागी सागी।

जी दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिनकी धुन ही आपको इतनी पसंद आ जाती है कि आप उसे गुनगुनाते रहते हो और गुनगुनाते रहते हो। आपको लिरिक्स बेशक समझ ना आए, लेकिन आप धुन आपके दिल में घर कर गई है। जी हाँ, और ये गाना कुछ वैसा ही है। एक श्रीलंकाई सिंगर ने इसे गाया है और फिर उसके बाद इसे एक बॉलीवुड मूवी में लिया गया है। ये गाना पहले ही बहुत ज्यादा हिट था, लेकिन उसके बाद थैंक गॉड मूवी में इसे लिया गया और फिर इसमें हिंदी लिरिक्स भी ऐड किए गए। जुबिन नौटियाल ने इसमें उनके साथ ड्यूएट गाया और ये गाना और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच गया। जी हाँ, लिसनर्स तक पहुंच गया। और बहुत सारे लोगों का एक ही कहना है, मतलब एक ही चीज कहते हैं लोग इस गाने को सुन के कि हम एक भी वर्ड नहीं समझ पा रहे, लेकिन फिर दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। मतलब यू कांट इवन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स बट यू आर स्टिल जस्ट लिसनिंग टू इट। जी हाँ, चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब जरा वेदर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है भाई। उसके हिसाब से प्लानिंग होगी हमारी अगले कुछ दिनों की और आज की। तो सबसे पहले तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, अभी की अगर बात की जाए तो 24.3 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। जी हाँ, और वहीं अगर बात की जाए कितना फील कर पा रहे हैं तो 23.4 डिग्री आप फील कर पा रहे हैं। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, जो कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ठंडा होने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ 80% चांसेस बारिश के, जैसे मैंने कहा था, मतलब 80% जो एरिया है सिटी का उसमें बारिश होने वाली है 1 to 5 mm। मुझे आप बताइए कि आपको देखने को मिली या नहीं मिली, बिकॉज या आप बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। जी हाँ, इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। वहीं आज के साथ कल की बात की जाए यानी कि थर्सडे की, तो थर्सडे को 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा विद 30% चांसेस ऑफ बारिश। मुझे बदरा दिख रहे हैं, मुझे मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर आप लोगों को बारिश पसंद है तो फिर तो आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं फ्राइडे की बात करें तो 60% चांसेस है बारिश होने के विद 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बीच में जो आपने बढ़ा हुआ टेम्परेचर देखा था एकदम से बहुत ज्यादा, उससे आपको निजात मिल गई है। सो बी हैप्पी अबाउट, बिकॉज ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अगर आपको सितंबर में इतना परेशान कर रही थी तो आगे कितना करने वाली है ये भी आपको सोचना था। तो अच्छा है ये बारिश हो गई, और ये बारिश के साथ साथ ये मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है, क्योंकि अभी हमें इतनी गर्मी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्जे नीवा के साथ। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो अब जर आपकी फरमाइशों की भी शुरुआत हो जाए तो बात बन जाए। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मैं बहुत ही दिल से कह रही हूँ, आई मीन इट फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट। जी हाँ, आपकी फरमाइशें जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद के साथ साथ जान भी डालती हैं। जी हाँ, सो आइए जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ। और अगर आप चाहते हैं किसी को कोई गाना डेडिकेट करना तो वो भी लेकर आ जाइए, बिकॉज यू कैन डू दैट हियर। दिस इज इवनिंग वाइब और यहां पर आपको पूरी तरह से वो करने को मिलता है। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए, और खास करिए उन लोगों के लिए जिनको सेल्फी लेना बहुत पसंद है।

बच के रहिए क्योंकि आमिर खान की पीके एकदम पीके ही है। जी हाँ, अब आपको पता ही होगा उसका मतलब क्या है। बट द थिंग इज कि मूवी बहुत जबरदस्त है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बिकॉज आमिर खान इज मिस्टर परफेक्शनिस्ट। पर मुझे लगता है उनको नजर लग गई है क्योंकि अभी जो उनकी कुछ मूवीज आई हैं वो इतनी अच्छी काम नहीं कर रही हैं। बट ऑल इन ऑल इन्होंने पहले जितने भी मूवीज की हैं वो एकदम फाड़ू हैं। जी हाँ, सो दोस्तों इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मेरे सामने एक रील आती है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा कि अपने लिसनर्स से पूछती हूँ बिकॉज मेरे लिसनर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जी हाँ, आप ही की बात हो रही है, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए और हमें इसका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम एब्स का एवोल्यूशन होने के बाद बने हैं तो अभी भी एब्स इस दुनिया में क्यों नहीं है, मतलब क्यों है। जी हाँ, फिर से पूछूंगी कि लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम एवोल्यूशन के बाद बने हैं, मतलब एब्स का एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ह्यूमंस बने, तो फिर बाकी एब्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो एब्स क्यों रह गए, मतलब उनका एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। या दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, और इसका आंसर तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे लिसनर्स में बहुत क्रिएटिविटी है, सो आई थिंक मुझे उनसे पूछना चाहिए, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस, राइट। मतलब हमको कहा जाता है, हमको बताया जाता है कि हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारी पूंछ चली गई, हमारे बाल चले गए, दिस दैट ऑल दैट जैज, और उसके बाद हम ह्यूमन बन गए। ऑल्दो हम बहुत सारी सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं उनके साथ, एंड दैट इज द रीजन कि ये थियोरी जो है वो हमें सुनने को मिली है और जानने को मिली है। बट अगर आप इस थ्योरी का दूसरा लॉजिक या दूसरी साइड की तरफ देखें, तो मतलब एवोल्यूशन अगर हुआ और ह्यूमन बन गए, तो एब्स जो अभी हमको देखने को मिलते हैं वो एब्स ही क्यों रह गए, वो क्यों ह्यूमन नहीं बने, राइट, उनका एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। या दैट इज द क्वेश्चन, एंड जब से मैंने ये सुना मेरे दिमाग में बहुत सारी थियोरीज चल रही हैं, बट मैं आपकी थियोरी जानना चाहती हूँ बिकॉज आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सो बताइएगा जरूर। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हैं। जे तुहानू लगता है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हैं तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही प्यारी पिक्चर शेयर की गई, एंड नॉट जस्ट एक बल्कि ज्यादा पिक्चर्स, यानी 7-8 पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की गई रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण के द्वारा, क्योंकि वो दोनों फिर से एक बार मॉमी डैडी बनने वाले हैं, यानी कि मम्मी पापा वो लोग बनने वाले हैं। एंड दे आर सो हैप्पी, उनकी हैप्पीनेस जो है उस मटर्निटी फोटोशूट में नजर आ रही है। जी हाँ, सो मटर्निटी फोटोशूट जो कि हो रहा है दीपिका पादुकोण का, उसकी पिक्चर्स जो है वो आ गई है। एंड अगेन उन्होंने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है, बिकॉज एवरीवन is like they are looking so happy. But पिछले maternity photoshoot से different है ये वाला maternity photoshoot, क्योंकि पिछले में उनके हाथ में एक और बेबी नहीं था, लेकिन इस बार उनके हाथ में बेबी दुआ है। जी हाँ, दुआ जो कि उनकी बेबी है, जो कि उनकी गर्ल चाइल्ड है, उनकी बेबी गर्ल है और उनकी पहली बेबी गर्ल है। उनका बर्थडे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया maternity photoshoot के साथ। उन्होंने बता दिया कि जल्द ही उनके घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। Although इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने पहले ही कर दी थी, लेकिन अब जो है वो वक्त करीब आ रहा है। सो दे आर लाइक, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट स्पॉइल आवर ऑडियंस एंड पीपल आर लविंग इट। सो ऑफ कोर्स तीनों, यानी ये जो फैमिली ऑफ थ्री है, क्यूटीज, ये बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे, बहुत ही हैप्पी नजर आ रहे थे। एंड दुआ लिटरली दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का ऐसा मिक्सचर लग रही है, मतलब दुआ सच में अपने मम्मी और मम्मी पापा की बेटी लग रही है। मतलब वो जो शक्ल है, वो जो चेहरा है, वो इतना मिलता है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से कि वो रिजेम्बलेंस जो है वो अनकैनी है, लाइक लिटरली। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फैमिली। ऑफकोर्स जल्द ही इनके घर में मेहमान आने वाला और हम फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बट फिलहाल के लिए वी आर वेरी हैप्पी, इनके फैंस बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि दुआ के आने के बाद रणवीर सिंह जो है वो सक्सेस की चढ़ाइयां चढ़ते ही जा रहे हैं। धुरंधर उनकी बेटी के आने के बाद ही हुई है, इमेजिन इमेजिन, राइट। सो या लेट्स सी कि जो एक और बेबी है वो कितनी जबरदस्त किस्मत उनके लिए लेकर आता है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी हाँ, अगर आपने फोटोज नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ड्रॉप की हैं। देखिए और मुझे बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये तीनों। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

जो भी देख यही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एलन मस्क ने कुछ कह दिया है एंड देयर इज द वेडनेसडे मोटिवेशन फॉर यू। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा मंडे मोटिवेशन ट्यूसडे मोटिवेशन काफी है, वेडनेसडे को भी तुमको मोटिवेट करना है हमको, मतलब छोड़ दो यार छोड़ दो, तुम हमेशा हमको काम करने के लिए इंस्पायर करती हो, थोड़ा मजे करने के लिए भी किया करो। वेल सिर्फ काम करने के लिए इंस्पायर नहीं करती हूँ, ये तो आपको भी पता है, मजे करने के लिए भी करती हूँ और अब थर्सडे फ्राइडे मैं वही करने वाली हूँ। लेकिन आज आपको एक और मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि पहले 3 दिन वीक के वो मोटिवेट अगर आप रहेंगे तभी तो अपनी लाइफ को वैसा बना पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, जिसके आप ख्वाब देखते हैं। जी हाँ, सो एलन मस्क ने कहा है कि पहला क्वाड्रिलियनर बनना इस दुनिया का इज नॉट इम्पॉसिबल एज इट साउंड। जी हाँ, मतलब आपने सही सुना, क्वाड्रिलियनर, जी हाँ क्वाड्रिलियनर, ये बनना, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियंस ट्रिलियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट क्विड्रिलियंस। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि इसको बनने में जितना मुश्किलात नजर आती है वो है नहीं एक्चुअली, मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल एक्चुअली, यू कैन एंड समवन कैन एंड इवन आई कैन, दैट्स व्हाट ही सेड। लेकिन उन्होंने कहा है आगे कि जी हाँ, बट उनको लगता है कि इट कुड टेक एन इकोनॉमी बिल्ट बियॉन्ड अर्थ, मतलब ये जो सिर्फ अर्थ पे जो इकोनॉमीज हैं उनके बस का नहीं है, ये सिर्फ उनसे ना हो पाएगा, मतलब अर्थ के बियॉन्ड अगर इकोनॉमीज बनेंगी तो ये हो पाएगा। जी हाँ, उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि रीचिंग अ माइलस्टोन वुड रिक्वायर फैक्ट्रीज ऑन द मून एंड मार्स, और उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर, ऐसा हो सकता है डॉलर में नो लॉन्गर बी द करेंसी ऑफ चॉइस बाय द। जी हाँ, अब ये कमेंट्स जो हैं ये एक स्पेकुलेशन की तरह आए हैं, जहां पर उन्होंने अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्केल को और अपने पोटेंशियल को बताया है, अपनी फ्यूचर वेल्थ के तौर पर वो उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अभी तक जो अचीव कर चुके हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर एलन मस्क ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। मतलब इससे पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कोई दुनिया में सबसे पहला ट्रिलियनर बन जाएगा, बट एलन मस्क हैज बिकम अ फर्स्ट ट्रिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, ही इज नॉट अ ट्रिलियनर राइट नाउ, दैट इज वन थिंग, बट द थिंग इज कि उन्होंने उस मुकाम को छू लिया है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि ट्रिलियनर के साथ आप क्वाड्रिलियनर भी बनना इज नॉट इम्पॉसिबल। या यू हैव टू डू मैनी थिंग्स, यू हैव टू सेट अप फैक्ट्रीज, इकोनॉमी इन डिफरेंट प्लैनेट्स ऑल्सो, बट इफ यू कैन डू दैट यू कैन बिकम द फर्स्ट क्वाड्रिलियनर इन द वर्ल्ड। वेल आई नो आप लोग बोलोगे कि यहाँ मिलियंस और बिलियंस कमाने में ही हमारी जो है हालत खस्ता हो जा रही है, इस बंदे को अब क्वाड्रिलियनर भी बनना है। जी हाँ, मतलब आपको पता है इस बंदे के एम्बिशंस को कोई नहीं रोक सकता, बट देन ये एम्बिशंस तो है बट इन्होंने करके भी दिखाया है, सो आई मीन उसके लिए तो आपको इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. Commercial matter हो जैसे लीज का मामला, business हो या फिर घरों की buying selling का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सो दोस्तों, एप्पल की तरफ से खबर आ गई है कि अपने फोल्डेबल फोन पे वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से वो अपने जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक ऐसा फोन लेकर आने वाले हैं जो कि उन्होंने इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा था। आप लोग बोलोगे कि सैमसंग का नाम सुना है क्या बेडू, सैमसंग का नाम सुना है? वो 10 सालों से फोल्ड कर पा रहा है, तुमसे अभी भी नहीं हो रहा। जी हाँ, बट द थिंग इज कि हाईलाइट ये है कि एप्पल ने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ये फोल्डेबल फोन जिस पे ये बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, ये उन्होंने इसलिए कहा है कि हम वो इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा आपकी पॉकेट से मोटा निकालने वाले हैं। जी हाँ, और इसका मतलब यही है कि वो काफी महंगा होने वाला है फोन, ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल का जो वो फोल्डेबल फोन है वो $2,000 से स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टार्ट। जी हाँ, पूरा जो अच्छे वाले मॉडल्स है वो $2,000 में नहीं आ रहे हैं, वो जा सकते हैं अप टू $3,000। People be like, you know what? Who's gonna buy that? But then people are like, you know what? ये एकदम से sold out हो जाएगा, एकदम से ले लेंगे, लोग इसके लिए कतारों में खड़े होने वाले हैं। Now I don't know कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन Apple literally अपने prices increase नहीं, super increase कर रहा है। अब ऐसे में Apple की market बढ़ेगी या कम होगी, we don't know about that, but foldable phone, एक ऐसा फोन जिसको fold करवाने की कोशिश वो 10 साल से कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है, Samsung पहले ही करवा चुका है और उसके लिए वो price charge कर रहे हैं कितना, $2,000, that too for a starting model। I don't know what to say to that, you tell me। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बर्थडे विश यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड का है आज जन्मदिन, और मुझे लगता है कि इसी से आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. वेल, ही इज द खिलाड़ी, ही इज द फिटेस्ट एक्टर ऑफ हिज जनरेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अक्षय कुमार. जी हाँ, मतलब ये बंदा कॉमेडी कर सकता है, ये बंदा एक्शन कर सकता है, ये बंदा कभी कभी सेंटी एक्टिंग भी कर सकता है. लेकिन सेंटी एक्टिंग नहीं, इनकी कॉमेडी और इनके एक्शन के लिए इन्हें पहचाना जाता है, एंड द नेम खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड. सो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद अक्षय सर आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से. हम यही कहेंगे कि ऐसे ही फिट रहिए, ऐसे ही उछल कूद करते रहिए, और ऐसे ही बताते रहिए सबको कि जल्दी उठकर सुबह जो आप अपने आप को बना सकते हो वो कोई रात को उठकर नहीं बना सकता. जी हाँ, मतलब ये बंदा फेमस है अपनी रूटीन के लिए. सुबह सुबह आते हैं, शूटिंग करते हैं और शाम से पहले निकल जाते हैं. जी हाँ, इनके साथ शूटिंग करने वाले एक्टर्स को भी जल्दी शूटिंग करने की एक्टिंग पड़ जल्दी एक्टिंग करने की और शूटिंग करने की आदत पड़ जाती है, बिकॉज ही लाइक्स इट दैट वे. और ये कहते हैं हमेशा से कि अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी को अच्छे से हेल्दी तरीके से जीना है, तो सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ. दैट इज द परफेक्ट वे, एंड आई थिंक दैट वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इन आवर लाइफ, बट वी डोंट डू दैट वेरी ऑफन. सो या जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद अक्षय सर, और ऐसे ही ये साल आपके लिए अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे. आप हेल्दी तो हो ही, आगे भी हेल्दी बने रहो, ऐसे ही उछल कूद और फिटनेस को बढ़ावा देते रहो. आपके पास बहुत सारा पैसा है जो कि ऑलरेडी है, लेकिन और उसमें बढ़ोतरी हो जाए, और सबको एंटरटेन करते रहिए अपने फैंस को, बिकॉज वी लव योर कॉमेडी एंड वी लव योर एक्शन. या इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.

जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब खबरों के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, लाइक लिटरली बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के विवाद की, क्योंकि यहाँ पर इसमें जलजला बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने 5 ईरानी तेल टैंकरों को बनाया निशाना, ईरान का जॉर्डन पर जवाबी हमला। जी हाँ, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सिटकॉम ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में एक अमेरिकी युद्धपोत को 2 बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के 5 तेल टैंकरों पर हमला किया। सिटकॉम के मुताबिक इनमें से 4 ईरानी तेल टैंकरों का संबंध ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से था, और जो ओमान की खाड़ी में थे। एक अन्य टैंकर को खार्ग द्वीप के पास निशाना बनाया गया। खार्ग ईरान के तट से दूर स्थित एक प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी। हालांकि जॉर्डन ने बाद में कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की दागी 20 मिसाइलों में से 18 को मार गिराया। दोनों देशों के बीच पिछले एक हफ्ते में एक दूसरे पर हमले तेज हुए हैं। ये संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के 6 महीने बाद भी बना हुआ है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.5% बढ़कर $99.41 प्रति बैरल हो गई। वहीं अमेरिका में कारोबार किए जाने वाले तेल की कीमत 1.6% बढ़कर $94.55 प्रति बैरल हो गई। इस बीच ईरान ने कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों पर मौजूद अमेरिकी जहाजों के खिलाफ अपने हमले करने की चेतावनी दी है। IRGC की नौसेना कमान ने कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों के पास मौजूद उन सभी तेल टैंकरों के क्रू को चेतावनी दी जिनका संबंध अमेरिका से है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी धमकी आई है, लेकिन किसके लिए आइए जरा वो जानते हैं, क्योंकि आई नो एंड यू ऑल्सो नो। जी हाँ, तो पाकिस्तान ने हूती लड़ाकों को दी है चेतावनी, कहा मक्का समझौता हो सकता है एक्टिव। तो पाकिस्तान ने कहा है कि मक्का रक्षा समझौते के 3 सदस्यों में से किसी पर भी हमले को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए और ऐसे हमले को 3 सदस्यों पर हमला माना जाएगा। बीबीसी फारसी के मुताबिक पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि सऊदी अरब पर हूती लड़ाकों के हमलों के बाद यह समझौता लागू हो सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये टिप्पणी यमन में ईरान समर्थित हूती हथियारबंद गुटों की ओर से सऊदी अरब के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन के सिलसिलेवार हमले शुरू होने के कुछ घंटों बाद आई है। इन हमलों में शहरों और आर्थिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया और कम से कम 73 नागरिक घायल हो गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी सदस्य देश के खिलाफ कोई भी आक्रामकता या यमन संघर्ष का सऊदी अरब तक फैलना मक्का समझौते को सक्रिय कर देगा। मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके मुताबिक इन तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला 3 देशों पर हमला माना जाएगा। लेट्स सी, बिकॉज ऐसे तो ये हाइपोथेटिकल और थोड़े से हिपोक्रेसी सिचुएशन के साथ काम करते हैं कि नहीं, मतलब अगर गल्फ में किसी कंट्री ने कुछ किया तो उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन उसके आजू बाजू कोई कंट्री करेगी तो उन पर जरूर हमला होगा। पर चलिए ठीक है, हूती विद्रोहियों का अगर कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। यमन की सरकार को भी राहत की सांस मिलेगी एंड अगर पाकिस्तान कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਕਰਦਾ।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan
2: aur aap sun rahe hain Radio Briswani।
3: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers and aap sun rahe hain Radio Briswani।
4: Hi, this is Salman Khan aur aap sun rahe hain Radio Briswani।
5: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia।
7: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan।
9: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani।
10: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
11: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is Grand Kirtan Night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651।
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
14: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
15: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
14: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
15: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
16: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सो मिस्टर ट्रंप के बारे में बात कर लेते हैं अब, क्योंकि मिस्टर ट्रंप जब बात करते हैं वो तो किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद उड़ाती है, क्योंकि हम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। जी हाँ, हम खिल्ली उड़ाते हैं ट्रंप की और लोग खुश हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू, आई मीन इट्स अ ट्रंप रोस्टिंग सेशन। सो एक नई हरकत उन्होंने की है। जी हाँ, अभी कल ही की बात है, मैं आपको बता रही थी कि कैसे मून पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, एटलीस्ट कब्जा तो वो नहीं कर पाए हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने एक बहुत बड़ा नियम जो है अमेरिका ने बनाया हुआ है कि कोई भी कंट्री मून को ओन नहीं कर सकती है और स्पेस में कोई भी और प्लैनेट को ओन नहीं कर सकती है। दैट इज वन थिंग। लेकिन ट्रंप जो है वो खुद ही ये चीज भूल गए हैं, मुझे लगता है। चलिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जो है उन्होंने बोल दिया, स्ट्रेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका स्ट्रेट, ट्रंप्स स्ट्रेट उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका घोषित कर दिया। लिटरली गूगल और एप्पल को बोला कि तुम भी कर दो, अगर तुमने नहीं किया तो तुमको देखूंगा मैं। जी हाँ, अब वो बेचारे क्या करते, अब कुछ भी बोलो है बेवकूफ, लेकिन है तो ट्रंप एक प्रेसिडेंट, राइट। अब फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी सुनिए। जी हाँ, उसके बाद अब वो मैक्सिको के पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, उन्होंने न्यू मैक्सिको का नाम न्यू अमेरिका कर दिया है। जी हाँ, या आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट किडिंग, इट्स ट्रू। मतलब उन्होंने सच में न्यू मैक्सिको को न्यू अमेरिका बना दिया। एंड देन पीपल वर लाइक ओके नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज द ओल्ड वन इज नॉट वेरी गुड। जी हाँ, लोगों को लग रहा था कि अच्छा न्यू अमेरिका मतलब बना रहे हैं ये कोई, है ना, क्योंकि पुराना वाला तो अच्छा है नहीं इतना। सो बाद में उनको पता चलता है कि न्यू अमेरिका तो उन्होंने न्यू मैक्सिको को कर दिया है। देन पीपल वर लाइक कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ सीईओ ऑफ अर्थ, लाइक ही वॉन्ट्स टू ओन एवरीथिंग। अभी कुछ दिन पहले जब वो लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका बना रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा, यू नो वॉट, हमारे पास अपना एक गल्फ है, हमारे पास अपनी लेक है, नाउ ऑल वी नीड इज अ ओशन। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि पैसिफिक को ट्रंप का बना देते हैं, यू नो अमेरिका का बना देते हैं, और दूसरे ओशन को भी किसी को बना देते हैं अमेरिका का, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, अपनी लेक, अपना गल्फ, अपना ओशन, हम सब कुछ ओन करेंगे। जी हाँ, मुझे लग रहा है सच में कि ये बंदा ना ट्रंप टावर बनाने की कोशिश कर रहा है मून पर भी, और जहां जहां इसका मन कर रहा है ये बाद में ना यही करने वाला है लिटरली। ऑफकोर्स ये तो कहने की बातें हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो ये बात जो है उनकी बनने नहीं वाली है। इनफैक्ट ये जो ग्रीनलैंड पे उन्होंने जो है अपना झंडा फहरा दिया, या जो एआई का जो इस्तेमाल वो कर रहे थे, और एआई का इस्तेमाल कर करके उन्होंने जो ट्रुथ सोशल पर हंगामा मचाया हुआ है, उसके बाद लोग ये बोल रहे कोई इसकी चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाओ सबसे पहले तो, क्योंकि इसने लिटरली तहलका मचा दिया है। और मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब ये बंदा, एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कि ऐसा कहा जाता है कि एक एज के बाद जो है जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों की तरह हरकतें करनी शुरू कर देते हैं, बट आई थिंक मैंने ऐसे और जो है बुजुर्गों को ऐसे हरकतें करते हुए नहीं सुना है, बट ट्रंप आई थिंक वो उम्र जो है यहां पर बात कर रही है, ट्रंप नहीं बात कर रहे, ट्रंप की उम्र। और सच में उनकी वो जो चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन कोई कैंसिल क्यों नहीं करता, क्योंकि ये इंसान कुछ भी बनाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। फिलहाल तो मैक्सिको वाले सोच रहे होंगे कि क्या बोले हम इस इंसान को, कोई अब कोई इसको हटाओ यार, कोई हटाओ यार, दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग, नॉट मी। आई मीन आप खुद सोचिए कि 92% लोग अमेरिका में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव। अभी तक का सबसे महंगा गैस प्राइस जो है वो वहां के लोग पे कर रहे हैं, लेकिन वो ये इन सब चीजों की फिक्र नहीं है इस इंसान को। इस इंसान को फिक्र किस चीज की है कि मैं कहां पे जाके अपना कब्जा कर लूं, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में, मेक्सिको में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, दिस दैट ऑल दैट, मतलब यही करना है इसको, अपने लोगों की जिंदगी को आसान कैसे बनाना वो तो करना ही नहीं। जी हाँ, वहां पे तो लड़ाई छेड़ी हुई है कि और उन लोगों को उसको पैसे पे करने पड़े, मतलब और टैक्सेस के साथ, मतलब जो अमेरिकन टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जा कहां रहा है, वो जा रहा है लड़ाइयों में, वो जा रहा है ये चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन में जाके, लिटरली ये फिर फालतूगिरी इंसान ये करता है। बट you know what the funny thing is ki people are not doing anything about him, but they are gonna do something about him. Ji haan, because yeah, we must do, because this man has gone crazy, like literally crazy. Ji haan, yahan par ek aur gana aap sabke liye meri taraf se.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, और वो सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने हनुमान अंश देखी। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने इस मूवी को आपको रेकमेंड किया था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर रेकमेंड किया था। मैंने कहा था कि आप ये मूवी देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें पूजा जाता है, जिन्हें माना जाता है, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस, एंड नॉट जस्ट इंडियंस बल्कि अमेरिकन्स एंड फॉरेनर्स। व्हेन इट कम्स टू स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, हर कोई इनके गुणगान गाता आया है। मैं बात कर रही हूँ नीम करोली बाबा जी। जी हाँ, और उन्हीं की लाइफ पर ये बनी है कहानी। और क्यों हनुमान अंश इस मूवी का नाम रखा गया, ये सारी की सारी स्टोरी आपको इसी मूवी में देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ द स्टोरी एंड द मूवी, बिकॉज इट हैज बीन ह्यूज। जी हाँ, मतलब जब ये मूवी लगी थी तो अपने ओपनिंग डे के लिए वो सिर्फ 10 लाख रुपए ही कमा पाई थी। कैन यू बिलीव, 2 करोड़ में भी पूरे में ये नहीं बनी थी। इनफैक्ट जो प्रोड्यूसर है इनकी, वो बाहर काम किया करती थी, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, सेव किए थे, उससे उन्होंने इस मूवी में पैसा लगाया। इस मूवी में जो एक्टर है वो रियल एक्टर नहीं थे, पहली चॉइस नहीं थे, कोई और एक्टर इसकी चॉइस था, लेकिन उन्होंने देखा कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। जहां पे सेट बनाया गया वो सेट इतना अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सारी जो इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि एक्टर्स को चाहिए होती है, वो भी प्रॉपरली वहां पर नहीं थी। तो जो सेट पे बंदा था, जो कि असिस्टेंट सॉर्ट ऑफ था, जो कि पूछता था कि ओके सर, मतलब आपको कुछ चाहिए तो नहीं, ये ऐसा वैसा, लाइक ऑल दैट जैज, उस बंदे को उन्होंने हीरो बनाया। क्योंकि हीरो जो इस मूवी का था उसने ये मूवी ही छोड़ दी। कैन यू इमेजिन दैट। जी हाँ, उसके बाद क्या होता है? वेल, उसके बाद इस मूवी को बनाया जाता है। इसमें जितने भी लोग आपको दिखेंगे इस मूवी में, उन सब को आप एक्टर मानते हो, लेकिन वो बैक स्टेज काम करते हैं, मतलब वो फिल्म सेट पर काम करते हैं। दे आर नॉट एक्टर्स, बट दे डोंट हैव एक्टर्स, सो इसीलिए उन्होंने उन लोगों को एक्टर बनाया जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अगेन असिस्टेंट थे उस फिल्म सेट पे, और उन्हें हीरो बनाया गया। उनसे पहले 2 बार करवाया गया, ऑडिशन लिया गया और उनसे एक्टिंग करवाने की कोशिश की गई, लेकिन तब वो उतने अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो डायरेक्टर को चाहिए वो निकलकर वहां पर नहीं आ रहा था, लेकिन जब 3री बार ट्राई करवाया गया उनसे, तो उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि उन्हें, यानी कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर को पता चल गया कि दिस इज द मैन, दिस इज द हीरो फॉर मूवी, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जी हाँ, मूवी बन गई, उसे रिलीज कर दिया गया, लेकिन मूवी का बजट इतना था नहीं, तो थिएटर्स भी इस मूवी को नहीं लगा रहे थे। अब जब थिएटर्स ने इस मूवी को लगा दिया, तो उसके बाद इसे ओपनिंग ज्यादा नहीं मिली, बिकॉज एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी फॉर टॉक्सिक, आवारापन, एंड यू नो ऑल दैट, ऑल दोज बॉलीवुड मूवीज, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस मूवी। बट देन एक व्यक्ति जो कि इन्फ्लुएंसर है, जी हाँ, वो जाते हैं, और वो भी आवारापन 2 देखने जाते हैं, बट आवारापन 2 की जो है जो टिकट्स हैं वो उन्हें, उनके पास होती हैं, लेकिन मूवी जो है वो स्टार्ट हो गई होती है, वो लेट होते हैं, तो वो अंदर नहीं जाते, वो आवारापन 2 नहीं देखते हैं। और वो पूछते हैं वहां पे सिनेमा घर में जो एम्प्लॉयज थे उनसे कि कोई और मूवी लगी है क्या। माइंड इट कि यहां पर वो हनुमान अंश देखने नहीं गए थे, वो देखने गए थे आवारापन 2, और फिर उसके बाद जो है आवारापन 2 वो देख नहीं पाते हैं कुछ सिचुएशन की वजह से, और फिर वो कहते हैं कि कोई और मूवी लगी है क्या। तो वो जो टिकट वाले होते हैं जो सिनेमा घर में, जो वो कहते हैं कि सर एक और मूवी लगी है, उसका नाम है हनुमान अंश। उन बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, वो ऐसे जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं, और जब वो देखते हैं वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस मूवी को देखने के बाद, कि उसके बाद वो आकर एक वीडियो बनाते हैं घर पे, एक रिव्यू वीडियो, और उस वीडियो को देखकर लोग इतने ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं इस मूवी के बारे में, लाइक लिटरली 20 मिलियन व्यूज जो है वो थोड़ी देर में ही उनको मिल जाते हैं उस वीडियो पे, एंड पीपल वेंट क्रेजी अबाउट द मूवी। उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। जी हाँ, 120 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है ये मूवी अभी तक। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब 2 करोड़ में भी नहीं बनी थी। एक ऐसी प्रोड्यूसर जो कि पहली मूवी बना रही थी, एक ऐसे डायरेक्टर जो पहली मूवी बना रहे थे, और वो छोड़ो, वो एक ऐसा एक्टर जो कि असिस्टेंट है फिल्म सेट पर, उसे एक्टर बना दिया गया, असिस्टेंट को एक्टर बना दिया गया। आप सोचिए क्या जर्नी रही है इस मूवी की, लेकिन ये मूवी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं अभी भी कहूंगी हम सबको ये देखनी चाहिए। जी हाँ, सो हनुमान अंश देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी मूवी, और इसी के साथ एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो आप भी आ जाइए और ये साथ में मिलके बनाते हैं इसको खूबसूरत सी महफिल। जी हाँ, मतलब पुराने गाने, पुराने किस्से और बस यही फसाने। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों को लेकर। अगेन शर्त यही है कि गाना होना चाहिए पुराना, तभी तो बनेगा तराना। जी हाँ, इसी के साथ जो पहला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है बहुत ही खूबसूरत, धीरे धीरे चल चांद आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रफी साहब के बारे में बात कर लेते हैं। रफी साहब के बारे में आशा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान और एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा कहा था कि यू नो व्हाट, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है और सबके साथ काम करके मुझे इतनी चीज तो पता चल गई है कि एक टाइम ऐसा आता था जब हमारी भी हिम्मत जवाब दे जाती थी, हमें भी ऐसा लगता था कि ये क्यों हो रहा है, मतलब हम चिढ़ जाते थे। जैसे कि गर्मी में जब हम रिकॉर्डिंग करने जाया करते थे तो एयर कंडीशनर नहीं होते थे, तो एयर कंडीशनर ना होने की वजह से हमें गर्मी और ज्यादा लगती थी और उस वजह से हम चिढ़ जाते थे। लेकिन अगर आप रफी साहब के साथ, या मतलब मैं रफी के साहब के साथ जब भी काम करती थी, जब भी उनके साथ रिकॉर्डिंग होती थी, तो मैं चिढ़ जाती थी लेकिन रफी साहब कभी भी नहीं छोड़ते थे। मतलब रफी साहब कोई मजाक नहीं करते थे, बस ऐसे ही स्माइली से चेहरे के साथ वो अपना काम किया करते थे। और दूसरी चीज, वो ऐसी चीजों में कभी भी चिढ़ा नहीं करते थे या अपनी पर्सनालिटी को लूज नहीं किया करते थे जिनके लिए हम सब बाकी लोग फेमस थे। मतलब अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग चिढ़ जाते थे, हम लोग शो करते थे कि हम लोगों से हो नहीं रहा, लेकिन रफी साहब सीधा बोलते थे, अरे अगर यही करना है तो ठीक है, ऐसे ही सही। जी हाँ, अगर ऐसे ही से करना है तो ऐसे ही सही। जी हाँ, मतलब ये चीज, ये पॉजिटिविटी कितने ही लोगों में होती है, राइट? मतलब कितनी कमांडेबल चीज है ये कि आप को गुस्सा नहीं आता है, आप चिढ़ते नहीं हो और आप अपने काम में इतने ज्यादा अच्छे हो। आई थिंक ही वॉज द बेस्ट पर्सन आउट देयर, नॉट जस्ट सिंगर बट द बेस्ट पर्सन। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खूबसूरत होने वाला है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
3: सुबह से शाम तक
4: व्हाट आई विल डांस, my dance shall speak for me.
3: Shaam se ratri tak.
4: Superb, superb, fabulous, outstanding.
5: Nahi, aise nahi. Khul ke boliye. Kaisa laga? Laga kaisa?
3: Aur phir uske baad aapka saath deta Radio Brizbani, aapki pehchan.
6: Hill mat chill.
5: Are bagair hill chill kaise hoga? Yeah.
6: Yeah.
5: Okay, soft.
6: Yeah, soft.
5: Yeah.
6: Up loud.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
7: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ, और सेगमेंट चल रहा है हमारा फेवरेट ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराने गाने पुराने किस्से. जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक फनकार कितना बड़ा फनकार है इसका पता तभी चलता है जब उसकी जिंदगी में कुछ और चल रहा हो, लेकिन उसे पर्दे पर या माइक पर कुछ और दिखाना हो या सुनाना हो या कहना हो. जी हाँ, मतलब जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चाहे एकदम तूफान ही क्यों ना आया हो, जब एक फनकार अपनी आर्ट को निभाने की कोशिश करेगा तो उसे पूरी शिद्दत से निभाएगा. वो अपनी जिंदगी की परछाई और अपनी पर्सनल लाइफ की जद्दोजहद को उस पर बिल्कुल नहीं पड़ने देगा. एंड ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज की थी गीता दत्त. जी हाँ, अब गीता दत्त जी के बारे में हम आपको क्या ही बताएं. ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि वो कितनी बड़ी स्टार जो हैं, वो रही हैं, उन्होंने कितने जबरदस्त गाने गाए हैं, रफी साहब के साथ उन्होंने कितने जबरदस्त गाने गाए हैं। जी हाँ, तो ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये है मूवी 12 o'clock का है। जी हाँ, 12 o'clock का। और इस मूवी के लिए ओपी नैयर को चुना गया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और ओपी नैयर जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड म्यूजिक डायरेक्टर उस वक्त के हुए हैं। और इनफैक्ट ओपी नैयर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो टाइम टेबल फॉलो करने वाले लोगों में से थे। मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों में से आते थे जिनको टाइम पे सारी चीजें करना पसंद थी। और बस फिर यही था, यहां पर रिकॉर्डिंग के लिए जो गाना था उसको गाने के लिए रफी साहब और गीता दत्त जी को एक साथ गाना गाना था। और ये वो वक्त था जब गीता दत्त जी की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मतलब वो माँ थी, वो एक बहुत ही खूबसूरत गायिका थी और वो पत्नी भी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में, उनकी पति की जिंदगी में किसी और औरत की एंट्री हो चुकी थी, और ऐसे में वो उस चीज से कोप अप नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए उन्होंने शराब पीने की सोची। जी हाँ, उन्होंने शराब का सहारा लिया। तो जब भी वो रिकॉर्डिंग्स के लिए आया करती थी या सेट्स पे आया करती थी, वो काफी बार नशे में धुत होती थी। और वो इसलिए नहीं, बिकॉज शी वॉन्टेड टू डू इट, बिकॉज वो उस चीज से कोप अप ही नहीं कर पा रही थी जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा था। बस फिर क्या था, इस मूवी के गाने के लिए, 12 o'clock मूवी के गाने के लिए रफी साहब उन्हें उनके घर लेने पहुंचते हैं क्योंकि उनको ड्यूएट गाना था। फिर गीता दत्त जी बाहर आती है और जब रफी साहब उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि गीता दत्त जी ने बहुत ज्यादा शराब यहां पर पी हुई है। मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो उनके साथ गाड़ी में बैठती हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आती हैं, और जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एंट्री करती हैं तो सब देखते हैं कि रफी साहब उनको संभालते हुए जा रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि गीता दत्त जी जो है वो चल भी नहीं पा रही हैं खुद से। सो ऐसे में रफी साहब ने उन्हें एक तरफ से पकड़ा हुआ है बाजू से ताकि वो कहीं गिरे ना। सब ये देखकर एकदम जो है वो शिकायती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या एटीट्यूड है, आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, आपको ऐसे शराब में धुत नहीं आना चाहिए। पर फिर भी किसी ने बोला नहीं क्योंकि गीता दत्त बड़ा नाम था उस वक्त गायकी की दुनिया में। बस फिर क्या है, गीता दत्त जी जो कि शराब में धुत थी लिटरली, मतलब उनसे चला नहीं जा रहा था, उनसे बात भी नहीं की जा रही थी, लेकिन जब वो गाना गाती हैं तो पहले ही टेक में, एक ही टेक में वो गाने को इतनी खूबसूरती से पूरा करती हैं कि सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। जी हाँ, मतलब कोई कह नहीं सकता था कि गीता दत्त जो है वो इस वक्त नॉर्मल है, क्योंकि उनकी आवाज तो छोड़ी है, उनकी चाल ढाल और बिल्कुल कुछ भी नॉर्मल नहीं था क्योंकि उन्होंने इतनी शराब पी थी, इतनी नशे में थी वो। लेकिन जब वो गाना गाती हैं तो एक ही टेक में वो इतनी खूबसूरती से गा देती हैं कि एवरीवन वाज लाइक कि वाह, क्या क्या, मतलब मतलब किस लेवल का प्रोफेशनलिज्म है। मतलब आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, डेडिकेटेड हो कि अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो आप उसे अपनी आर्ट के बीच में ना आने दो। जी हाँ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड देयर। ये देखकर सब दंग रह गए। और जो गाना उन्होंने गाया था वो था तुम जो हुए मेरे हमसफर।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, हो गया है वक्त जाने का, क्योंकि घड़ी की तरफ शायद आपने देखा नहीं है। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, इशारा कर दिया है घड़ी ने और ये भी कह दिया कि निव्या शर्मा नाउ यू नीड टू गो, जाओ, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो ठीक है, चलिए मैं मान जाती हूँ। आप सब इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है मुझे कितना प्यार है तुमसे। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना शमी कपूर माला सिन्हा की मूवी का दिल तेरा दीवाना का। जी हाँ, सुनते हैं इसको एंड मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, सी यू, टाटा।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: When I will dance, my dance shall speak for me.
0: शाम से रात्रि तक
1: Superb, superb, fabulous, outstanding.
2: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
1: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
1: yeah.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Okay, soft.
1: Yeah, soft.
2: Yeah.
1: Up loud. Yeah.
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: एलएनजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 53% तक पहुंच गई है। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव और तनावपूर्ण रास्तों की वजह से भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका से सप्लाई बढ़ाई है। वहीं बेंगलुरु में नई सेमीकंडक्टर लैब का उद्घाटन। जी हां, टेक कंपनी HCL टेक ने बेंगलुरु में 185 करोड़ रुपए के निवेश से एक विशाल सेमीकंडक्टर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। इसके साथ ओडिशा में दुर्लभ ओरंगउटान रेस्क्यू। ओडिशा के बालासोर जिले के एक गांव में जंगल से 5 छोटे बेबी ओरंगउटान को रेस्क्यू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष काफी तेज हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ते में जारी इस तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पास पहुंच गई हैं। वहीं ईरान एयरलाइंस पर नए अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान की 27 कमर्शियल एयरलाइंस पर नए और सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि इन एयरलाइंस का इस्तेमाल सैन्य सामान और हथियारों को ले जाने के लिए किया जा रहा था। वहीं बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की सुरक्षा का भरोसा। बांग्लादेश सरकार ने आने वाले दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान देश के अल्पसंख्यक समुदाय और हिंदू धार्मिक स्थलों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विकल्प की तलाश। मिडल ईस्ट में मरीन रूट बंद होने के खतरे को देखते हुए यूएई अपने पूर्वी बंदरगाहों का विस्तार कर रहा है ताकि उसके एनर्जी एक्सपोर्ट में कोई रुकावट न आए। वहीं एफिल टावर में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। पेरिस का मशहूर एफिल टावर कर्मचारियों के विरोध के कारण अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। कर्मचारियों ने महिला सहकर्मियों के साथ हुए पक्षपात का आरोप लगाया है जिसकी जांच शुरू हो गई है। वहीं साउथ कोरिया में बढ़ा रोजगार। जी हां, दक्षिण कोरिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में देश में 184,000 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा हुए जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को राहत मिली है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर। यूएस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन ने कार्लोस अल्कराज को 4 घंटे 28 मिनट चले मैराथन मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वहीं बेलोन डी और 2026 की लिस्ट जारी। फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बेलोन डी और 2026 के लिए आधिकारिक नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कई दिग्गज युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं चैंपियंस लीग में नेपाल पीड़ितों को श्रद्धांजलि। चैंपियंस लीग के मैचों के दौरान नेपाल तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। वहीं जापान और भारत का पहला T20 मुकाबला। जापान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 22 सितंबर को होने वाले ऐतिहासिक T20 मैच के लिए अपनी 15 सदस्यों वाली टीम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: बेटा, आंसू पी के भी जो मुस्कुराए, वही तो जमाने को जीत पाए।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: क्या कहा

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
2: या
3: Okay,
2: song. Yeah, song. Yeah. Up loud. Yeah.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी वॉइस और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: घर

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सत श्रीकाल जी, मैं हां संदेश चौलक शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो बरसानी वलसर 101 ते जबिला हो चुकिया हुण तक ते हम खबरां दा ता फिर चलो करदे हां शुरुआत। रुक करदे पंजाब दे वल जिथे अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं बेअदबी अते गोलीकांड मामले दी जांच कर रही एसआईटी ने मुड़ तलब कीता है। एसआईटी ने सुखबीर बादल नूं 11 सितंबर नूं चंडीगढ़ विच पुछगिछ लई बुलाया। इत्थे इह वी दसण योग है कि इस तों पहलां 20 जुलाई नूं एसआईटी ने सुखबीर सिंह बादल नूं पुछगिछ लई बुलाया सी। इस दे नाल ही दूजे पासे सुखबीर बादल नूं जारी होए एसआईटी दे समन नूं लैके अकाली दल दे सीनियर आगू अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा है कि सरकार बहुत मुद्दयां ते घिर चुकी है, भावें ओह जबरजना रिश्वत कांड होवे, नशे दा मुद्दा होवे या मुख्यमंत्री दा विरोध करन ते नौजवान दी कुटमार दा मामला होवे, ना सारे मुद्दयां तों ध्यान भटकाउण लई इह समन कढ़िया गया है। अजिहियां कारवाईयां नाल पंजाब दे असल मुद्दयां तों ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। पंजाब विच लोक नशे नाल पीड़ित हन, लोकां नूं कुट्टिया जा रहा है, खुदकुशियां हो रही ने, अजिहे जिन्ने मर्जी समन भेज लैण, इह सिर्फ सियासत हो रही है। उन्होंने कहा है कि 11 साल तो यह मुद्दा ज्यों दा त्यों खड़ा है, जांच कित्थे है, इस मुद्दे नूं सिर्फ ते सिर्फ सियासी मुद्दे दे तौर ते ज्यों दा रख्या जा रहा है। उधर पंजाब विधानसभा चोणां विच सिर्फ 6 महीने बाकी रहण कारण भाजपा पूरी तरह चोण मोड विच आ गई है। यही वजह है कि पार्टी ने सितंबर अते अक्तूबर विच छोटी दे 3 आगुआं दे प्रोग्राम पंजाब विच रखण दा फैसला कीता है। उच्च पद्धरी सूत्रां दी मन्नीए तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्तूबर विच पंजाब दा 3 रोजा दौरा करनगे। फिलहाल उन्हां दे इस प्रोग्राम दी तारीख तय नहीं होई है, पर पार्टी दा अमृतसर, जलंधर, लुधियाणा ते पटियाला दे आसपास दी मोदी दा प्रोग्राम रखण दा विचार है। मोदी पहले दिन माझे दे कई विधानसभा हल्कियां विच रोड शो करनगे ते रात नूं राधा स्वामी सत्संग ब्यास दे मुख दफ्तर विच आराम करनगे। हालांकि अजे उन्हां दे प्रोग्राम दी रूपरेखा बन रही है, पर पार्टी आगू बठिंडा या पटियाला विच उन्हां दी रैली आयोजित करन लई राष्ट्रीय लीडरशिप नाल संपर्क कर रहे ने। उह बठिंडा तों रोड शो करते हुए पटियाला भी आ सकते हन। पीएमओ अते राष्ट्रीय लीडरशिप मिलके प्रधानमंत्री दा प्रोग्राम तैयार कर रहे ने। इस दौरान केंद्र दे अफसर लंबी दिवी काम कार विच रुझे हुए हन। इन्हां दा काम ए पता लाउणा है कि पीएम अपने दौरे दौरान केड़े केड़े ऐलान कर सकते हन ते चोणां लई जनता दे सामने केड़े वादे रख सकते ने जो पूरे हो सकण। उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, अमृतसर तो सांसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला ते साबका विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने दिल्ली स्थित कांग्रेस हैडक्वार्टर विखे पंजाब दे नवे नियुक्त किए गए इंचार्ज सचिन पायलट नाल मुलाकात की। वड़िंग ने कहा है कि पायलट देश दे हमेशा ही एक बेहद लोकप्रिय अते मंग वाले आगू रहे हन। उन्होंने दस्सिया है कि जदों इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रधान सन, उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाडा तो बाद सचिन पायलट की सब तो वध मंग रही सी। आगुआ ने पायलट नूं जन्मदिन दीआं शुभकामनावां दित्तीआं ते फुल भेट करके उन्हां नूं नवीं जिंदगी लई वधाई भी दित्ती। बाद विच पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्हां कहा है कि पंजाब विच कांग्रेस की पूरी लीडरशिप अते पार्टी का हर वर्कर पूरी तरह एकजुट है ते बहुत जल्द पूरी लीडरशिप इको मंच ते नजर आवेगी। पायलट की आमद नाल पार्टी नूं नवीं मजबूती मिलेगी ते आउण वाले समय विच कांग्रेस दे आगू इक मंच ते इकट्ठे होके पंजाब लई लड़ाई लड़नगे। उधर पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कांग्रेस विच जाण दीआं चर्चावां विचाले उन्हां दी धी जयिंदर कौर दा वड्डा बयान सामने आया है। पंजाब भाजपा महिला मोर्चा दी प्रधान जयिंदर कौर ने स्पष्ट कीता है कि उन्हां दे पिता भाजपा विच रहणगे। मीडिया वल्लों कैप्टन दे कांग्रेस विच जाण दे सवाल दा जवाब दिंदिआं उन्हां कहा है कि कैप्टन साहब भाजपा विच हन ते भाजपा विच ही रहणगे। जयिंदर कौर ने कहा है कि कांग्रेस विच अंदरूनी कलेश चल रहा है अते उन्हां कोल जदों कोई होर मुद्दा नहीं हुंदा तां ओह अजिहियां अफवाहां फैलांदे रहिंदे ने। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले नूं लैके चुप हन ते इस बारे अजे तक उन्हां दा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उधर नेपाल विच होए भयानक हड़ां कारण मरण वालियां दी गिणती 1300 तों पार हो गई है, क्योंकि प्रभावित खेतरां तों होर लाशां बरामद हो रहीआं ने। अधिकारियां ने इस संबंधी जानकारी भी दित्ती है। उधर रूस दे माउंट मिजहरकी ते एतवार शाम बर्फ खिसकण कारण 11 पर्वतरोहियां दी मौत हो गई। स्थानक अधिकारियां मुताबिक 33 पर्वतरोहियां दा एक ग्रुप जदों पहाड़ ते चढ़ाई कर रहा सी उदों ही अचानक वड्डी मात्रा विच बर्फ खिसक के उन्हां दे उपर डिग गई। कई लोग बर्फ हेठां दब्बे गए। 10 पर्वतरोही किसे तरह सुरक्षित हेठां उतर आए, जदों कि 6 लोग अजे वी लापता हन। बचाव टीम
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਮਜ਼ਿਰਗੀ ਵਿਚ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 5,025 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਦੇ ਕਾਬਾਡੀਨੋ ਬਾਲਕਾਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਪਰਬਤਰੋਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮੁਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਲਹਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਹਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਹਾ ਸਈਦ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਲਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਤਲਹਾ ਨੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਤਲਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਾਦ, ਇਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ briswani@briswani.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਿਸਵਾਨੀ ਵੰਸਰ ਵਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुम बड़े हो जी, थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 जी आर जी संदेश अलग दे नाल बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवाणी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसीं अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसीं सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड दी चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत दा नाम रोशन कीता है। BFTA कांस वैनस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित कीता हैगा। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच खूब वाहवाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो तुहानूं पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां है। तां अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तां उस बारे सानूं शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तां चल मैं तुहानूं दस्सदी हां, ते जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि इह फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 FM ते जी आरचे संदेश चालक दे नाल बने हुए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईयां हुईयां ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां ते इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग। फिल्म का नाम ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतीआं नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना, वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दिन नाल तुसीं बने होए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा है, वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी हैगी है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इसे। ये ना बचपन के दो दोस्त जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है, तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति की कहानी हैगी है। ये भारत की अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच। शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ये धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई है, 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: बराक ओबामा ने इस 2024 की टॉप फिल्म चुनिया सिगा।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज़ है। सो वेरी गुड।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग कीती है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिन आल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलां नूं बचाते हैं कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिलया है।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: A musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.01 ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच वह है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सिज अनोबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ उह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार,
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी, है चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी। फिल्म नू वेनिस फिल्म फैसटिवल PRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरॉन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े। रेडियो बरसौनी 107.1 FM साड़ फेसबुक पेज है जी, बरसौनी @bersoni.com साड़ी ईमेल आईडी है, जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो, है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखे करो। सत श्रीकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night again?
2: Yo, I'm gonna smash your boy.
3: Kid.
2: Tomorrow night, I'm gonna smash your boy.
4: Stop this.

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कुछ बातें कहे जाने के लिए नहीं होती, वो गाई जाती हैं, और जब वो गाई जाती हैं तो कव्वाली बन जाती है।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीम सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

अपनी तकलीफ के बारे में क्या क्या बताऊं तुम्हें, अपनी तकलीफ के बारे में क्या क्या बताऊं तुम्हें। वो सपने में आकर नींद छीन लेती है। ये जो तुम आराम की बात करते हो, वो रास्ते में दिखती है और चैन छीन लेती है। बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने जमीर से, ए दोस्त, बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने जमीर से, तो उसके इलाके से दूर रहना। सुना है वो मिलने का वादा करती है और ईमान छीन लेती है। तुम बड़े सुकून से रहते हो मजनू, ये जो तुम बड़े सुकून से रहते हो मजनू, मिले नहीं शायद उससे। बताने वाले बताते हैं, वो गले लगाती है और जान छीन लेती है। बताने वाले बताते हैं, वो गले लगाती है और जान छीन लेती है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्जन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले On the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
3: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा। लगा कैसा?
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
4: हिल मत चल।
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा? ओके
4: सॉफ्ट।
5: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/2

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132ANT यानी के 132268 उते कॉल करो ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन अ प्लेस टू कॉल होम खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जाण सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: करें

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 04886234599 या बीरेंद्र सिंह ऑन 04093905833 या फिर बाबा ऑन 04137016651।
5: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जीवन अनमोल है, ये जीवन इसका कोई मोल नहीं है, आप कितने ही रुपए खर्च कर लें। कहते हैं जिसे इस दुनिया से जाना है ना, उसे आप बचा नहीं सकते। और यकीन मानिए, जो इस दुनिया से जा रहा है, अगर आप उसका सारा धन वैभव भी ले लें तो वो खुशी खुशी दे देगा अपने इस जीवन के लिए। लेकिन जीवन रहते हम इस जीवन को ना तो जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। आइए आज वक्त रहते अपने जीवन को जानने की एक और कोशिश करते हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर हमारे खास सफर जीवन आधार में। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

0: चिंता। आपने भी ये जरूर सुना होगा श्रोताओं कि चिंता चिता के समान होती है, और आज के दौर में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चिंता, वो हम सबको घेरे हुए है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं। और चिंता कोई एक नहीं होती, चिंता के अनेक रूप हैं। आज इसकी चिंता तो कल उसकी चिंता, या फिर ये कहें एक ही वक्त में न जाने कितनी चिंताएं हम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये चिंता ही है जो आपको चिता तक ले जाती है। जिसको एक बार चिंता हो गई ना, वो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, लेकिन उसका रोग खत्म नहीं होता, बल्कि एक रोग से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आप अगर पढ़ने और जानने बैठेंगे, आप समझने बैठेंगे, तो ज्यादातर बीमारियां आज के समय में जो हो रही हैं, वो इसी चिंता के कारण ही हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM, और रहिए सताक्षी के साथ।
1: के कदम

जीवन को जानने समझने और खूबसूरत बनाने का ये जो सफर है जीवन आधार, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके साथ है सताक्षी। चलिए अपने जीवन को एक नया आधार देते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। भव सागर में डूबता कर गई काढ़ है केस। रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। और कबीरदास जी कहते हैं श्रोताओं कि हम संसारी जन जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमको कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला, हमको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला, रास्ता बताने वाला नहीं मिला जो उपदेश देता। और हम जो भव सागर में डूब रहे हैं, जो बिना ज्ञान के हम गोते लगा रहे हैं, हम इस संसार में चक्कर लगा रहे हैं, कोई होता जो हमको पकड़ कर निकाल लेता, है ना। अक्सर जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं तो ये लगता है कि यार कोई होता जो हमें सही राह दिखा पाता, जो हमें सही और गलत का भेद बता पाता, तो शायद हमारी जिंदगी में फेलियर्स आते ही नहीं। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जब तक आप जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, कोई आपको कितना भी संभाल ले, आप गलत करने से बच नहीं पाएंगे। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सही रास्ते पर लाते हैं और सही और गलत की पहचान कराते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंस के नाम ये अगला गीत है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार में रचा बचा ये साथ है हमारा, ये साथ है जीवन के आधार से जुड़ा जीवन आधार। जी हाँ, जिंदगी आसान तो है, लेकिन ये जिंदगी तब आसान लगती है जब इस जिंदगी को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना ये जिंदगी हर रोज एक नई मुश्किल से भरती चली जाती है। आइए अपनी जिंदगी को और करीब से जानते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

मनुष्य की एक बहुत ही बुरी आदत है कि उसमें बहुत जल्द गर्व आ जाता है। गर्व आ जाता है इस बात का कि आज उसके पास नेम है, फेम है, घर है, गाड़ी है। इस बात की जो एक ईगो है वो उसमें आ जाती है। अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति को देखकर कभी घमंडी मत बनिए, क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य की जो देह है ना दोस्तों, वो भी धरती में डल जाती है और उसके ऊपर भी घास उगाती है। इसलिए किस बात का घमंड, ये जब शरीर ही आपका नहीं है तो धन संपत्ति वैभव पोजिशन ये कैसे आपकी होगी। आइए इसी एक बात के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन के सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन को जानने की समझने की एक और कोशिश जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ, और इसी कोशिश के साथ एक और गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार।

धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला कभी भी आप ठीक से नहीं ले सकते। अब देखिए ना, अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचने लगे तो भी वो फल तो ऋतु आने पर ही देगा ना। ऐसा तो नहीं अगर आप उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो आपका पेड़ भी जल्दी बढ़ जाएगा और उसमें फल भी आ जाएंगे। सब कुछ वक्त के साथ ही होता है। इसीलिए हर चीज को समय दीजिए, वक्त दीजिए और वक्त पर छोड़ दीजिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन आधार में आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास साथ जीवन आधार में। वक्त की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और आपसे कल मिलने के वादे के साथ आज के सफर से अब लूंगी विदा, इजाजत, और कल जरूर लौट कर आऊंगी। तो कल जब तक आपसे अगली मुलाकात होती है तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी ब्रिस्बेनी फैमिली। अगर आपकी आंखें खुल चुकी है ना, कॉफी बन चुकी है और गाड़ी ब्रिस्बेन की रोड पर निकल चुकी है, यानी कि मैं निकला ब्रिस्बेन की रोड में। हाँ जी, तो दोस्तों ये प्यारी प्यारी सी एनर्जी के साथ मैं आप सभी के बीच, यानी आपकी दोस्त और होस्ट आरजी जानी जैन हाजिर हो चुकी है लेके प्रोग्राम जाने का सफर ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेनी और खास प्यारे प्यारे गाने आप सभी के लिए दोस्तों। और आज की मॉर्निंग बेहतरीन जरूर होगी, क्योंकि हमेशा हमारा आपको पैटर्न पता ही है कि हम क्या कुछ सुनाते हैं, गॉसिपिंग होगी, एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम क्या अपडेट्स हो रही है वो लेकर आए हैं, और बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन की न्यूज अपडेट।

आपके बीच साझा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग ऑफिशियली ऑन चुकी हुई हो चुकी है। तो आपने दोस्तों कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रिस्वानी में शुरू हो चुका है जी अपनी बातों का सिलसिला। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में इस प्यारी से एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, हम सुबह सुबह उठते ही अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक बिल्स, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर, कितनी चीजें, कितनी टेंशन हमारे दिमाग में होती है। लेकिन दोस्तों, आज एक काम जरूर करिएगा, सुबह के पहले 10 मिनट्स ना सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखिए। जी हाँ, एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी फेवरेट चाय या फिर कॉफी इंजॉय कीजिए और खुद से कहें, आई डोंट नीड टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट टुडे, आई जस्ट नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, बस एक स्टेप एट अ टाइम, है ना। सही बात है ना। इसीलिए दोस्तों, अपने लिए 10 मिनट निकालना बहुत जरूरी है और उन 10 मिनट में ना आपको पता चलेगा अपने बारे में, क्योंकि अभी तक आपको भी अपने बारे में नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हम इतनी सारी कहते हैं ना बिजी शेड्यूल में अपने आप को खो ही देते हैं, अपने आप को भूल ही जाते हैं। सिर्फ हमें यही पता होता है कि आज कौन सा प्रोग्राम, कौन सा टारगेट पूरा करना है, क्या कुछ करना है, कल के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं जिस बीच हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में जरूर 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालिएगा, फिर देखिए और भी मजा आएगा आपको लाइफ को जीने का। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

గులుగులు

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। तो आइए फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्विक ऑस्ट्रेलिया अपडेट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर इकोनॉमिस्ट जो है उसकी नजर बनी हुई है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिस्बेन समेत कई ऑस्ट्रेलियन सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो अगर आप ब्रिस्बेन में प्रॉपर्टी मार्केट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं ना, तो दोस्तों ये डेफिनेटली वॉचवर्थी सिचुएशन है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद और भी बहुत सारी बातें ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बानी में। दोस्तों, ब्रिस्बेन में ना ब्रिस्बेन फेस्टिवल का मूड भी फुल स्विंग में है। दोस्तों, फेस्टिवल के शोज में मामाडल्स डबाई भी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। एक एनर्जेटिक मदर डॉटर स्टोरी जिसमें की कॉमेडी, इमोशंस और रोलर स्केटिंग का इंटरेस्टिंग मिक्स है। और म्यूजिक लवर्स के लिए भी ब्रिस्बेन में एक्शन है। एक्स म्यूजिक के 3 nights ऑफ ऑस्ट्रेलियन रॉक, हार्ड रॉक एंड मेटल September 1 से लेके 3, यानी कि आज तक, स्टेप्स 1 सितंबर से शुरू हो चुका था, आज तक फोर्टिट्यूड वैली के सॉफ्ट बॉक्स बियर में हो रहे हैं। तो आप अगर आज जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जानेंगे और भी बहुत सारी बातें ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिजवाणी में। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा मूड बनाते हैं एंटरटेनमेंट का, क्योंकि बॉलीवुड और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से आ रही है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और ब्रूनो मार्स फैंस के लिए बिग न्यूज है भाई। ब्रूनो मार्स के ऑस्ट्रेलिया टूर को लेकर डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ब्रिस्बेन के सनकॉर्प स्टेडियम में एक एक्स्ट्रा शो ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, अब ब्रिस्बेन में ब्रूनो मार्स 28 फरवरी और 1 मार्च यानी कि 28 फरवरी से लेके 1 मार्च 2027 को परफॉर्म करेंगे। जनरल टिकट सेल 4 सितंबर से स्टार्ट होगी। सो ये बहुत बड़ी न्यूज थी भाई। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी मेरे बॉलीवुड लवर्स, आपको भी एक बात चलो बता ही देते हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन डेज अपनी अपकमिंग फिल्म वाइब को लेकर हेडलाइंस में है। उन्होंने अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने कभी कभी 18 आवर्स वर्किंग डेज भी किए हैं। और वहीं पर अगर हम कृति सैनन की बात करें, उन्होंने भी अपनी एक्टिंग जर्नी का एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि एक रैंडम मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी के बाद धीरे धीरे उनके माइंड में एक्ट्रेस बनने का ड्रीम डेवलप हो गया। और मूवी लवर्स के लिए भाई सितंबर का मंथ जो है वो काफी एक्साइटिंग जो है वो होने वाला है। दायरा, हैवान और द विवन जैसे टाइटल्स के साथ बॉलीवुड और OTT दोनों पर काफी न्यू कंटेंट आ रहे हैं। तो भाई एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिलहाल एक्साइटमेंट फुल ऑन है। काइली से लेके ब्रूनो मार्स तक और बॉलीवुड में प्रीति जिंटा और कृति तक स्टार्स कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर ही रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ गानों की, यानी कि सुनने की। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और इस गानों को एंजॉय करते रहें।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने जानी बहुत सारी अपडेट्स, एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत सारी बातें, बॉलीवुड से बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, इसी के बीच अब बारी आ चुकी है क्लोज करने की, यानी कि प्रोग्राम को क्लोज करने की, ताकि कल फिर हाजिर हूँ आप सभी के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज, ब्यूटीफुल वाइब के साथ। सो दोस्तों, आप सभी बस जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड एंड कीप द ब्रिस्वानी वाइब अलाइव। सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग एंड हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थर्सडे। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूएस की कार्यवाही पर भड़का ईरान, फारस की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों और 8 टैंकरों पर किया हमला। मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से ईरान के 5 तेल टैंकरों को तबाह किए जाने के बाद तेहरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC नेवी ने फारस की खाड़ी में 10 जहाजों और होर्मुज स्ट्रेट के पास 10 अन्य जहाजों पर हमला किया। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल होने से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्री। यूके के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अचानक आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण विमान सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गड़बड़ी की वजह से लगभग 1000 उड़ानें पूरी तरह रद्द करनी पड़ी है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने खार्ग द्वीप के पास मिसाइल हमले में उड़ाए ईरान के 5 तेल टैंकर, IRGC ने दी पलटवार की धमकी। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप के पास ईरान के कई तेल टैंकरों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने 8 सितंबर को ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले जहाजों के नष्ट करने का सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी वॉरशिप पर हमला होने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री को मिला 64% का सैलरी हाइक, 26 करोड़ रुपए से भी अधिक हुआ वेतन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने संसद को बताया कि राजनीतिक नेताओं की सैलरी बढ़ाई जाएगी। इससे मंत्रियों की सैलरी में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। सिंगापुर ने राजनीतिक नेताओं के भारी भरकम वेतन को सही ठहराया है, तर्क दिया है कि इससे काबिल लोग आकर्षित होंगे और अच्छा शासन सुनिश्चित होगा। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। हाइड्रल सुरंगों में फंसे 121 कर्मियों की जिंदगी बचाने को लेकर प्रयास जारी, पाइप से पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। नेपाल में भयावह बाढ़ के 14 दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। अब बचाव दलों का सबसे बड़ा ध्यान 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे दर्जनों कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है। अधिकारियों के मुताबिक इन भूमिगत सुरंगों में करीब 121 कर्मियों के फंसे होने का अनुमान है। सुरंगों में पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। क्रिमिनल का 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी भारत से शेयर करने को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। इससे पहले क्रिमिनल ने कहा कि भारत को स्टील फाइटर जेट बेचना पुतिन के एजेंडे में सबसे ऊपर है और मास्को SU-57 टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने की संभावना पर नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है। मास्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए भारतीय मीडिया से बात करते हुए क्रिमिनल के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, SU-57 जेट बहुत एडवांस्ड मशीनें हैं और ये दुनिया की बेहतरीन मशीनों में से एक है। इन मशीनों को बेचना एजेंडे में शामिल है। हर देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन भारत के साथ हमारे गहरे रणनीतिक संबंध हैं, इसलिए हम इस संभावना पर चर्चा करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी भारत को दी जा सकती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: उम्मीद है दोस्तों आज के जो गीत है आपको पसंद आ रहा है, और अगर नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा नंबर है क्या हमारा नंबर है अमिता?
1: 043-003-1701 या 3279-1701। बहुत ही सिंपल है,
0: बहुत इजी
1: है।
0: इजी यानी इजी,
1: इजी, टेक इट इजी।
0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर चलो शमी कपूर।
1: कैन यू, इट्स 7:30, सो हैप्पी बर्थडे इफ इट्स योर बर्थडे टुडे, एंड अ हैप्पी एनिवर्सरी इफ यू सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी।
0: ओके, हैव अ लवली डे।
1: वी होप यू हैव अ ब्यूटीफुल डे।

0: जी हाँ दोस्तों, देख रहा हूँ कुछ लोग अपना फरमाइश भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जैसे भी हम दोनों मिलकर बहुत प्यार से आपको हैप्पी बर्थडे विश हमने किए हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कह दूं दोस्तों कि देखिए दोस्तों, उम्र सिर्फ कैलेंडर पर लिखा एक नंबर है। जब तक दिल में उम्मीद और कुछ नया करने का जज्बा है, तब तक जिंदगी जवान है। तो अगर आप रिटायर्ड होने लगे हैं तो सारा दिन टीवी के सामने में सोफा में पर बैठकर ये नहीं चलेगा दोस्त, ऐसे नहीं करिए प्लीज, डोंट पनिश योरसेल्फ। चलिए थोड़ा टहरिए, थोड़ा चलो और यू नो लोगों से बातचीत कीजिए। आप रास्ते पर मिलेंगे बहुत से लोग शायद, हेलो, ये सब करना बहुत जरूरी है। और रिमेम्बर एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग, जब सुबह को आप उठते हैं तो आपको एक ऐसा चाहत होना चाहिए कि आज मैं ये प्लान किया हूं और मैं आज ये करूंगा। यू शुड बी सो एक्साइटेड अबाउट इट। जब तक ये आपके लाइफ में है दोस्तों, आपका बुढ़ापापन बहुत दूर रहेगा, ठीक है।
1: दैट्स सो ट्रू,
0: या बी एक्टिव, बी एक्साइटेड,
1: कीप योर माइंड बिजी।
0: जी, नया नया तरीका खोजे, नया नया चीज करने को सोचे आप, या कोई नया वेजिटेबल बोने का कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग दैट इज एक्साइटिंग आपके लिए, तो आप जरूर करें। जैसे घर में आंगन में आगे सबसे आगे सब खोद कर आप वो वेजिटेबल बो दे
1: एंड गेट अ फाइन फॉर इट,
0: गेट अ फाइन, फिर काउंसलर से लड़िए आप, कितना एक्साइटिंग होगा। टुडे इज थर्सडे, ओके,
1: ऑलराइट,
0: चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो विजवानी आप सुन रहे हैं।

0: ओके चलो अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत से लोग इंटरनेट से सुन रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ड्रॉपिंग बाय, और आप ब्रिजवाणी को अपनाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू स्प्रेड द वर्ड, ठीक है, टेल योर फ्रेंड्स। एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, इस सिटी जो है ब्रिस्बन, वहां से दो लोग
1: पागल लोग
0: पागल सही रहता है। What, and you knew, and I think the listeners just automatically must have felt कि पागल दो पागल लोग। पागल भी एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, you
1: know? I know,
0: कुछ
1: right?
0: लोग बड़ा प्यार से भी पागल बोलते हैं, you know?
1: At least you take it in good spirit when I say something.
0: अच्छा आप पागल है। My little one says that sometimes. We have a good laugh. चलिए एक रिक्वेस्ट है।
1: जी।
0: प्रेम जी थैंक यू वेरी मच, और लता मंगेशकर लता मंगेशकर की आवाज में है, इज इट, एंड मुकेश, ठीक है।

0: कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता चलूं आपको. डू यू नो फिजी हैज मोर देन 330 आइलैंड्स.
1: हाउ मेनी? 330
0: आइलैंड्स, बट ओनली अराउंड 1/3 आर पर्मनेंटली इनहिबिटेड. राइट?
1: इनहिबिटेड.
0: राइट? ऑस्ट्रेलिया इज वाइडर देन द मून.
1: Yes.
0: Did you know that?
1: Yes. You told us that before.
0: I told you before. You got a good memory. Aapka yaadas is very good. Australia stretches almost 4,000 kilometers east to west, while the moon's diameter is about 3,475 kilometers.
1: Yes.
0: Okay.

0: के एक गाना और मैं बजाने जा रहा हूं, शायद आपको अच्छा लगे दोस्तों, अगर नहीं तो बताना मुझे।
1: I'll tell you if I don't like it.
0: All right. और देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि मंडे को एक हमारे गेस्ट रहेंगे, इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, ओके, इंग्लिश में रहेगा लेकिन आप जरूर सुनिएगा, एंड व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, राइट, थर्ड जनरेशन, तो द आर्काइव ऑफ फोटोज एंड हिज फैमिली गोइंग बैक टू इंडिया, and that time India and Pakistan was same, right?
1: Mm. Oh, so far back.
0: And how the family got mixed and everything. It was so interesting.
1: Mm.
0: It'll be very interesting, okay? So, dekhna, sunna zarur, okay? Chal, is git to sunte.
2: Ek taraf to hi duniya bole.
3: Ka bole?
2: Sab se karo tum pyaar. अरे का ठीक कहते हैं, जब दुई दिल प्यार करे तो ई ससुरा
3: ससुरा, अरे कौन ससुरा,
2: अरे हमार।

0: घर परिवार का गाना भी आपने सुना, जमाना क्या कर लेगा हमारे, जमाना को मारो गोली। दोस्तों आप एक ही लाइफ है, अच्छी तरह से आप जिए, एंजॉय करिए, अच्छे अच्छे काम करें, बस और क्या वरी करते हैं
1: आप,
0: है कि नहीं?
1: Yeah, why worry?
0: Yeah. तो ये रहा एक बड़ा चलता फिरता कैसे एक्सप्लेन करूं मैं गाना, और
1: आई नो इट्स
0: क्या वो इनमें क्या कहा उन्होंने,
1: व्हाट मुफ्त में घर जमाई,
0: भगवान ने ऐसा कुछ किया,
1: कुछ व्हाट
0: गिफ्ट मिला मुफ्त में,
1: घर जमाई मुफ्त में, कैसे
0: आई मस्ट वॉच दैट मूवी,
1: व्हाट मूवी वाज इट,
0: घर परिवार,
1: हाँ घर परिवार,
0: कैसे कैसे लोग बना देते हैं सब। चलिए उम्मीद है दोस्तों आज आपका प्रोग्राम आज का आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, और बतला दूं आपको, याद दिला दूं, व्हेनेवर आई से दिस,
1: याद दिला दो,
0: एनीवे आज इस कार्यक्रम के बाद
1: नाउ आई एम फीलिंग हॉट ऑनेस्टली,
0: प्रताक्षी के साथ आप बोलना मत और संदेश के साथ 11 बजे और फिर 3 बजे से आप हो जाएंगे निविया के साथ, ठीक है, ऑलराइट,
1: क्या, लेट मी ब्रिंग सम ऑर्डर बैक
0: ओके
1: इनटू द प्रोग्राम।

ओके दोस्तों, चलिए एक और गाना आप सभी के लिए. शिकारी 1963 मूवी का गाना है, और लीजिए सुनिए. लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर.

0: ओके, तुझको पिया दिल दिया। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, इस समय 8:17 हो गए हैं और थोड़ा सा एड बजा देते हैं आपके लिए, फिर हम वापस आएंगे। ठीक है, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान।
1: क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413-701-651.
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शानिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शानिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक of Mahmood Jaffy and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का। अच्छा, वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में। लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा। अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
1: ओके, ऑलराइट, आई नो, कुछ हेल्थ के बारे में हम फाइंड आउट कर रहे थे दोस्तों। अगर आप कुछ मेडिकेशन लेते हैं और अगर आप थोड़ा भूल गया, कोई बात नहीं, ओके, बट डोंट ट्राई टू डबल अप।
2: आई नो दैट।
1: No, I'm just telling
2: okay,
1: my
2: I
1: people.
2: Deliberately, I was just, I don't know why, I just said I refuse to take it tonight.
1: You were not, forgetful, you were naughty.
2: I deliberately did not take
1: that
2: it.
1: That was naughty.
2: I said, let me see what happens.
1: Why you want to do experiment like that? Doctors,
2: no,
1: you want to become
2: no,
1: a doctor
2: hang
1: yourself?
2: On, no, no,
1: Here
2: no,
1: you got
2: no.
1: a degree Hear to become a doctor.
2: Hear me out. Hear me out. I take the medication because she doubled my dose, right? Yeah. I take it. And when I check my pressure at 4 in the morning, believe you me, it is like 178 over something. Now, how can it be that high?
1: So, okay, so you didn't take it. So, did you check your...
2: No.
1: Well, what did you achieve?
2: Nothing.
1: There you go. Maybe, okay, I'll go for a couple of weeks and see if your pressure comes down.
2: No, it's like 4 in the morning.
1: No, but I mean, that it could be all contributing.
2: What an excuse you finding. Using my high blood pressure, my hypertension, should I say,
1: yeah,
2: for you to make an escape.
1: Yeah.
2: Eh? That is naughty. Not me.
1: You see how much I sacrifice just so that you don't get a pressure.

0: ऑलराइट ओके अब हम आ गए हैं व्हाट 8:38 पर.
1: अरे वेयर डिड द टाइम गो?
0: आई डोंट नो, वही कम्बक को रोक नहीं सकता है ना.

चलिए, समय कम है दोस्तों इस प्रोग्राम में, और आपको बता दूं कल कल नीलम के साथ आप रहेंगे, ठीक है? तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

0: और इसीलिए गीत को हमने बजाया दोस्तों, क्योंकि तुमसे अच्छा कौन है दोस्तों,
1: तारीफ क्या करूं
0: मैं? तारीफ करूं क्या तुझे को? अच्छा कौन है?
1: पंडित जी थैंक यू सो मच.
0: कुछ बोला
1: पंडित जी? हाँ, he says we energize his day. God bless. Thank you, Pandit ji. Means a world to us.
0: We're so happy to. ऊपर वालों को बहुत धन्यवाद दो कि हमको energize रखे हुए हैं.
1: ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं.
0: तेरा जवाब नहीं. That's a nice song.
1: Yeah. It is. Find it if you want. We got to end the program, my dear. It's 8:56.
0: Yeah.
1: So you better hurry up.
0: Okay. All right.
1: You sound very slow.
0: Oi. Upar wale tera jawab nahi.
1: Yeah.
0: Okay. We want.
1: And
0: to
1: we will say
0: that.
1: Namaste.
0: Namaste. Goodbye.
1: Have a beautiful day.
0: Okay. Look after each other, huh?
1: Yes.
0: Be happy. Be happy, dosto.
1: And make check on each other, please.
0: All right. Take care.

मॉर्निंग बडीज, कैसे हैं? कैसे हैं सब? मजेदार ना? ठीक है, जिंदगी में थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अपना जो जिंदगी जीने का तरीका है ना, उसे हमें नहीं छोड़ना है और ना ही उसे बदलना है। क्योंकि जो हमारे जिंदगी जीने का वे है, जो हमारे जिंदगी जीने का तरीका है, वो सारी जिंदगी खुशनुमा रहे, बेहतरीन रहे, यही तो हमारी और आपकी विश है, है ना? तो बस जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहिए और इसी एंजॉयमेंट के साथ हर एक मॉर्निंग को कहते रहिए गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग में सताक्षी आपके साथ हैं, आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर आप ही के ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस को लेकर। सो बातें तो होती रहेंगी, हम और आप आगे बहुत सारी बातें भी करेंगे, अभी तो शुरुआत है। लेकिन अभी जो लोग नहीं उठे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे भाई, इसके पहले कि ये गाना खत्म हो जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, जाइए ताकि बातें हो पाए आपसे, वरना आधी नींद में आप रहते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

जी हाँ, इट हैपेंस सर। इसी सफर को आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। भाई ये वक्त जो है ये उनके लिए खास है जिनको आज रेडियो प्रस्वानी विश करने वाला है, और हम जानते हैं कि वो लोग हमारे लिए बहुत खास हैं। तो बर्थडे बहुत बहुत मुबारक, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और विवेश की यार जिंदगी जो है वो खुशनुमा है आज और कल भी ऐसे ही खुशनुमा बनी रहे, और आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना आए इस लाइफ को लेकर, है ना। हल्के फुल्के से जिंदगी को हल्के फुल्के ही मोमेंट के साथ जीते रहिए। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, देखिए वो वाली फीलिंग में मत आइएगा कि शादी है बर्बादी, ये नारे पे लगवा दूंगा, अब तो हो चुकी है भाई, तो नारे लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी को सेलिब्रेट कीजिए हर साल ऐसे ही, और इस खुशी के साथ कि कोई ऐसा बंदा आपके पास है जो की हर खुशी में आपके साथ। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबकी जिंदगी का जो भी आगाज होना है बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन हो, इसी विश के साथ आइए सुनते हैं ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

मॉर्निंग शो इटहैपेंस को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। मैं क्या सोच रही थी कि इंपल्सिवली अगर आप अपने एक्स को मैसेज कर देते हैं, सपोज भाई, हाँ मतलब मुझे गुस्से से मत देखिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, कर देते हैं तो भाई वो आपसे क्या कहेगा? यही कहेगा कि यार इट्स नॉट अ गुड आइडिया, हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सपोज कि अगर आपका एक्स कोई लेखक है, कोई राइटर है, तो वो क्या कहेगा कि देखो मिलने की तुमसे कोई आस तो नहीं है और करने को बात भी कोई खास तो नहीं है, मिलोगे तो भी पूछने को पूछ लेंगे कि कैसे हो, अगर मिलोगे तो पूछने को पूछ लेंगे कि कैसे हो, पर माफ करना तुम्हारी बेचैनी मिटा सके पास हमारे अब वो सास तो नहीं। आय हाय, गजब गजब गजब, मतलब मैं क्या ही लिख देती हूँ कभी कभी, और ये यूं ही जहन में आया और बैठे बैठे आपके लिए लिख दिया। So, कैसा लगा, है ना? तो सभी लेखकों को जो यूं ही बैठे बैठे अपनी कलम चला लिया करते हैं, ट्रैक ये अगला मैं डेडिकेट कर रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और कहीं मचाएगा, क्योंकि इस तरह के और बहुत सारे मॉर्निंग गॉसिप है जो आपके साथ हम करते रहेंगे। फिलहाल ये अगला ट्रैक सुनिए।

वेलकम बैक, इट हैपेंस सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं आप अपनी रेडियो किस्पानी 1701 एम पर। भाई साहब, इतनी जिंदगी गुजर गई, क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? मैंने जिंदगी से यार बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो सबसे बढ़िया बात सीखी वो ये कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी एक बीमारी होती है। और जब आप सबके सुनने लग जाते हैं तो लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपके पास भी अपना एक दिल है, वो बस आपको अपने हिसाब से यूज करते हैं, अपने हिसाब से अपनी बातों को आपके लिए सेट करते हैं, और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट क्या करते हैं? वो कंफर्म होते हैं कि वो जो कहेंगे वो आप करेंगे। तो भाई, जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनिए, उतने अच्छे बनिए जितने आप हैं, है ना? और क्योंकि आपकी अच्छाई जो है वो आप पर ही भारी पड़ जाती है। दूसरों के हाथ का पपेट तो नहीं बनना ना, अच्छे बनना है। क्यों? आइए एक और ट्रैक सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्पानी पर। सताक्षी आपके साथ है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: सरकार Brisbane लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं. असी होर भी वर डॉक्टर मुहैया करवा रहे हैं अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हैं. 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हैं. स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हैं. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द
3: गाने हैं बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक. ये पहला ट्रैक है आपके लिए.

तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

बात करते हैं अभी सिर्फ अपने बारे में, यू नो, अपने आप को ना हम एक लाइफ तक, एक एज तक जो है वो मिरर के थ्रू जज करते हैं। मोटापा ज्यादा बढ़ गया है, चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं, लाइंस आ गई हैं, चेहरा मोटा ज्यादा लग रहा है, लोग हमें किस नजरिए से देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। और रोज आप सुबह शाम मिरर देखना शुरू करते हैं, एक छोटा सा अगर पिंपल भी दिख जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आपके लिए वो मिरर नहीं, आपकी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं इससे ज्यादा आपको ये मैटर करता है कि मैं कंफर्टेबल हूं कि नहीं, मैं ठीक हूं कि नहीं। क्योंकि एज के बाद परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फीचर्स, परफेक्ट स्किन, इन सबसे ज्यादा मैटर करता है परफेक्ट पीस ऑफ माइंड। तब आपके लिए मैटर करता है वो कॉन्फिडेंस जो तब आता है जब आपको अपनी इम्परफेक्शंस को हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि हर वक्त लाइफ के हर फेज में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। और यही तो है लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज और आपकी सबसे ब्यूटीफुल एज। आप अगर इस एज में हैं या इससे गुजर चुके हैं तो आपके नाम ये ट्रैक है। और अगर अभी आप इस एज में नहीं आए हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बॉडी शेप से निकलकर बहुत ही जल्द आप अपनी पीस ऑफ माइंड के फेज में आ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्फानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

सुबह अगर आप चाहते हैं आपकी मॉर्निंग ब्यूटीफुल हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, रापची हो, तो एक छोटी सी बात आज से फॉलो करना शुरू कर दी। सुबह की जो आपकी चाय है या कॉफी है, सुकून से पीजिए, बिल्कुल एकदम आराम से, कोई टेंशन, कोई जल्दबाजी नहीं। अपनी पसंद से ड्रेसअप हो या अपनी पसंद के कपड़े पहने, किसी और के हिसाब से नहीं। अगर कोई कहता है कि कौवा सफेद है, तो कह दीजिए हाँ सफेद ही सही, सफेदी तो है। अगर कोई कहे उसका कौवा सफेद ही रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। और अगर कोई कहे कि शेर चाय पीता है, तो कहिए हाँ आज सुबह की चाय मैंने उसी के साथ तो पी है। कहने का मतलब ये है कि किसी को भी सफाई मत दीजिए, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं है। और वैसे भी अगर कोई गलत फहमी में खुश है, तो उसे भी खुश रहने दीजिए और आप भी रहिए, क्या जरूरत है क्लेरिफिकेशन देने की। हाँ, ये हॉट ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए 107.1 एफएम पर।